0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईसँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: 6 PM
3: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: कफी पकाए नि मान्दिन सनाछि के छ र मेरो खुट्टा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेक बेसीको धुन, रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।
1: रिमा इन्टरटेनमेन्ट नेपाल।

जति पकाए नि मान्दिन कानाछी के छ र मेरो खुट्टा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एक बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हरपल
0: हर तपाई सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 9 PM
4: अहिले रातको 9 बज्यो।

कवि ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात ये चक्की चलती रहती है,

कानून के अनुसार प्रेम एक कच्चे धागे के जैसा होता है, बड़ा संभालना पड़ता है। देखिए क्या सुंदरता से वर्णन किया है,

कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता था। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास

जमीन में पढ़ा, समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर्यामी, उन्हें क्या नहीं मालूम, शायद मुझसे कहलाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिखी,